बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव रहल डाक्टर हेमन्त स्वार से टीकापुर में सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोलचोक लगह अपन भवन से सेवा देती रहल

0: गर्भवती जाँच सेवा, यौन रोगकी परामर्श तथा उपचार सेवा सँग तालिम पाइल स्वास्थ्य कर्मी से क्षयरोग तथा कुष्ठरोग सम्बन्धी सेवा फेदे जाए। सम्पर्क सत्कार पोली क्लिनिक प्राली, गुम्बा रोड, गोलचोक लगह, टिकापुर कैलाली। फोन नम्बर 0915600595 ओ मोबाइल नम्बर 9848423359।
1: आई हो बड्डो, घर कहिया सिर्जैबो? पाछसे शुरू करल मने घर सिजार सेकल?
2: अरे का करुरी बुढिया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गेल बाटु। मिलबो मिलबो नि करत का कैन हो का?
1: मिस्तरान बर्जन हुकन घर हेरो ना, कट्टा सुगुर बनैल बाट, आल्मोनियम के मुहाका द्वार लगा क टुफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न, कबु कहुरो घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848513426।
4: लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको गुणस्तरीय बहुपक्षीय न्यायिक सेवाका लागि टिकापुर अस्पतालमा रहेको एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र ओसीएमसी सँग सहकार्य गरौं।
5: यो ओसीएमसी भनेको के आयो फेरि?
6: ओसीएमसी भनेको लैंगिक हिंसा प्रभावित महिला बालबालिका तथा पुरूषहरूलाई एकीकृत रूपमा बिना भेदभाव गुणस्तरीय सेवा, चिकित्सा जन्य प्रमाण संकलन र संरक्षण, आवश्यक मनोविमर्श सेवा, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र परिवार वा समुदायमा पुनस्थापना, जीविकोपार्जन तथा कानूनी सहयोग र सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने उद्देश्यले तोकिएको केन्द्र प्रदेश वा जिल्ला अस्पतालहरूमा व्यवस्थापन गरिएको संकट व्यवस्थापन केन्द्र हो।
5: ओसीएमसीले के सहयोग गर्छ त?
6: यस अन्तर्गत 2078 सालबाट टिकापुर अस्पतालमा पनि ओसीएमसी स्थापना भई लैंगिक हिंसा प्रभावित र पीड़कलाई समेत स्वास्थ्य लगायत सूचीकृत सबै सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। त्यसैले कुनै प्रकारको लैंगिक हिंसा प्रभावितहरूको स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवाका साथै अन्य सूचना तथा जानकारी लिनका लागि टिकापुर अस्पताल ओसीएमसीमा सम्पर्क राख्नुहोला।
7: थप जानकारीका लागि ओसीएमसी टिकापुर अस्पतालमा सम्पर्क राख्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9584899213, इमेल ocmcTikapur@gmail.com।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेर ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9800071024 ओ 9800047417।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै एल्विस एल्विरा टेरसमा हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा डिजाइन डिजाइनका साडी सुट कुर्ती पलाजा तथानका कपडाहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छन् एकचोटि सेवाको मौका अवश्य दिनुहोला
5: एल्विस एल्विरा टेरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टीकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम के बिहान के 9 बजे थारू भाषा खोज खबर में यहां उपरांत स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपनी खुकरी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 MHz के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप साम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। टिकापुर नगरपालिका के वाड़ा स्तरीय भू उपयोग योजना तैयारी के विषय में छलफल। टिकापुर से फिर भू उपयोग योजना अनुसार जगह वर्गीकरण करती। टीकापुर में चोरी के घटना बढ़ती। चोरी करना उद्देश्य से ब्लॉक नंबर 6 में 2 घर में तोड़फोड़। आज फिर देश के कुछ स्थान में भारी पानी पड़ना संभावना। सुदूर पश्चिम ओ कर्णाली प्रदेश में भर मध्यम वर्षा हुई। कैलाली बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी से बनाई नई आभा हर्बल साबुन ओ मोमबत्ती। टिकापुर नगरपालिका में भू उपयोग योजना निर्माण के लागि पहिल चरण में छलफल हुई बा। पहिल चरण में वार्ड नंबर 1 में हुईलक छलफल में भू उपयोग

0: योजना का अन्वयन के लाग जग्गा वर्गीकरण मापदण्ड हो आधार के विषय में छलफल करते हल्के हो ऐसी छलफल सकुवाड़ा में आयोजना बिना कहलबा सरकार से भू उपयोग योजना बिना नई जग्गा के कोनो फे समेत कारोबार कर नहीं मिलना कहके कड़ाई करल पाछे जग्गा वर्गीकरण के समेत मापदण्ड तैयार करना सरकार वाला हुकन बीच छलफल शुरू कर गिल वड़ाध्यक्ष मोहन लोहार बिका बटोली बाटे वड़ाध्यक्ष विकास नेपाल सरकार के भू उपयोग के ऐन 2076 हो भू उपयोग नियमावली 2079-80 अनुसार है जग्गा है 10 प्रकार के वर्गीकरण करगिल मनो टीकापुर नगर पालिका से आवश्यक वर्गीकरण नहीं करला को याकर वर्गीकरण कर पर्ना बटोले बाटे टीकापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के आयोजना में हुई छलफल में राजनीतिक दल के प्रतिनिधि मालपोट कार्यालय के प्रतिनिधि तोल विकास संस्था के प्रतिनिधि और सरकार वाला हुकरा सहभागिता जनाइल बाटे छलफल में सहभागी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि तथा सरकार वाला हुकरा भू उपयोग की योजना बनाएबेर जग्गा धनी है समेत मर्क नहीं पर्दा करके योजना बनेना सुझाव दे गिलवा प्रारंभिक छलफल से एक पाछ फिर जग्गा वर्गीकरण के विषय में छलफल हुई न कहलबा वार्ड नंबर 1 से शुरू हुई लग छलफल और वाड़ा में फिर करना हो एक पाछ फिर से छलफल करके जग्गा वर्गीकरण के काम करना शर्म कन्स्टिटेन्सियल के प्रतिनिधि दीपेन्द्र प्रसाद जैसी जानकारी दिले बाटे नेपाल कपड़ा तथा सिलाई व्यवसाय संघ नगर कमिटी टीकापुर से रसुआ बाढ़ पीड़ित ठुकरन के लग आर्थिक सहयोग करल बा बाढ़ पीड़ित ठुकरन के लग समिति से आपन सदस्यता से समेत 21,555 रूपया सहयोग करल के हो समिति से ई रकम प्रधानमंत्री राहत तथा उद्धार कोष में जमा करलक दमर तिखातरी जानकारी दिले बाटे नेपाल कपड़ा तथा सिलाई व्यवसाय संघ नगर कमिटी टीकापुर से तमाम सहयोग कार्यक्रम करती आयल बा हाल देशभर मानसूनी वायु के प्रभाव रहल बा मानसून के न्यूनचापी रेखा सरदर स्थान के आसपास रहल बा हाल कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश में साधारणतया मौसम बदलल बा तथा कर्णाली और सुरपश्चिम प्रदेश के आंशिक मौसम बदलल बा कोसी मधेश बागमती और गंडकी प्रदेश के कम स्थान तथा लुम्बिनी कर्णाली और सुरपश्चिम प्रदेश के एक दो स्थान में हल्का से लेके मध्यम पानी पड़ती रहल बा आज दोपहर के देशभर साधारणतया मौसम बदलन बा कोसी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के हिमाली भूभाग में कुछ स्थान तथा गंडकी कर्णाली और सुरपश्चिम प्रदेश के हिमाली भूभाग में एक दो स्थान में मेघगर्जन सहित पानी पर्ना संभावना रहल बा कोसी बागमती गंडकी लुम्बिनी प्रदेश कर्णाली प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में ढेरी स्थान में और सुरपश्चिम प्रदेश के पहाड़ी भूभाग में कुछ स्थान में मेघगर्जन चट्टांग सहित के मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा मधेश प्रदेश लगायत के समेत बागमती और गंडकी प्रदेश में तराई भूभाग में ढेरी स्थान कोसी और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में कुछ स्थान तथा सुरपश्चिम प्रदेश के तराई भूभाग में ढेरी स्थान में मेघगर्जन सहित मध्यम खाल के पानी पर्न संभावना बा कोसी बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के पहाड़ी तथा मधेश प्रदेश लगायत के बागमती गंडकी और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में एक दो स्थान में भारी पानी पर्न संभावना बा खोजखबर में एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछ फिर से भी सुनते रहिए सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: यो खाने मन तो कहाँ छ र तर के गर्नु जीवन एक्लो एक्लो लाग्छ फेरि खानै पर्छ
2: तपाई एक्लो कहाँ छ श्रेया त्यति माया गर्ने आमा छिन् दिदी छिन् भाइ छ बरु एक्लो त म छु म पनि पहिले आफूलाई एक्लै सम्झिन्थे कुलत छुटेपछि पो थाहा पाएँ यो सुन्दर संसार कति सुन्दर रहेछ बाँच्नुपर्छ अनि पो संसारको मजा लिन पाइन्छ
1: हो र तेरो त अहिले टन्न कमाइ छ र त्यसो भन्छ
2: अनि सुधार गृहमा बसेको बेला कसको पो कमाइ हुन्छ त जब म निस्केँ काम गर्न थालेँ अनि पो कमाइ छ त यो कमाइ पनि मेरो लागि होइन हिजो मेरो कुलतमा हुँदा आमा रुँदै रुँदै जानुभयो अब घरजम गर्नु छ श्रीमती छोराछोरी होला उनीहरूको लागि पनि सोच्दैछु म
1: ओहो तैँले त साँच्चै एक्लो हुँदा पनि भोलिको सुन्दर संसार सोचिसकिस् जस्तै यार अब म पनि कुलत छोड्छु आमा दिदी भाइ सबै परिवारलाई खुसी बनाउँछु भोलिको जीवन सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छु।
3: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
4: हिन्दू महिलाहरूको महान चाड हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै दुर्गा ज्वेलर्समा एक नम्बर सुनबाट निर्मित माइली तिलरी, छड्के तिलरी, रामलीला झुम्का, पिजडा झुम्का, बाला, औठी, पेण्डल, चन्द्रमा र अर्डर गरे अनुसार सुनचाँदीका गरगहनाहरू बिना रसायनका बनाइनुका साथै खरिद बिक्री पनि गरिन्छ। एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला।
5: दुर्गा ज्वेलर्स, बलभद्र चोक नमुना इन्टरप्राइजेस नजिकै टिकापुर कैलाली, सञ्चालक देव बहादुर सुनार, सम्पर्क नम्बर 9868 40 16 60।
0: विश्राम पासे फेर से स्वागत बा। टिकापुरमा चोरी की घटना बढ़ते रहल बा। टिकापुरमा घर मालिक नै रहलक, घर तोड़फोड़ करूया, चोरी करना के घटना दैनिक रूपमा बढ़ती गेल बा। टिकापुर के तमाम ब्लकमा घरमा तोड़फोड़ करके चोरी करते रहलक हो। कुछ दिन आगे ब्लक नम्बर 6 दुईठो घरमा तोड़फोड़ करके चोरी के प्रयास करल बा। ब्लक नम्बर 6 स्थित हेमराज गेवालियो कल्याण दहाल के घरमा तोड़फोड़ हुई बा। चोरीमा केला समेत आयल हुका द्वार, घरक द्वार, दराज लगायत के समेत सामान तोड़फोड़ करना के साथ ही सामान छरपस्त पार्लक हेमराज गेवाली की भेवा यज्ञराज गेवाली जानकारी दिले बाट काम के सिलसिला में घर बाहर रहलक मौका पारके सोन चांदी तथा नगद चोरैना उद्देश्य से अलग चोर हुक्र नगद लगायत के कुछ सामग्री भर घर मन से समेत लगिलो और सर सामान भर नहीं लगिल वहां कहल बाट टोलमा चोरी के घटना हुई रहल पाछ स्थानीय ट्रस्ट फिल बाट इसी स्थानीय मैसरा तमत्ता चोरी के घटना से समेत त्रास बढ़लक ओर से प्रहरी से गश्ती बढ़ाई पर्ना के साथ ही सुरक्षा देह पर्ना माग करते आयल बा। अधिकांश घर में महिला और बाल बच्चा केल बैठ स्थानीय ईश्वरी स्वर्णकार दैनिक चोरी की घटना हुई रहलक ओर से तनाव बढ़ल बटोरे बाट स्थानीय गायत्री गेवाली घर में चोरी की घटना हुई रहलक समय बढ़लक अभिभावक घर बाहर समेत जैना डर बढ़लक ओर से सुरक्षा चाहल बटोले बाट और महिला मीना गेवाली फे चोरी की घटना बढ़लो ब्लक नंबर 6-7 में गश्ती बढ़ाई पर्ना बटोले बाट इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुर से घर तोड़फोड़ हुईलक ओर से घटना में संलग्न के खोजी अनुसंधान हुई रहल बटोले बाट। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसमा विज्ञान संकायकी विद्यार्थीहरूको वनस्पति जन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग गरे हर्बल साबुन मैनबत्ती उत्पादन गर्नबाट क्याम्पस के विज्ञान प्रयोगशालामा तमाम वनस्पति से समेत आवश्यक कच्चा पदार्थ तयार गरे एकर प्रशोधन मार्फत साबुन तथा मैनबत्ती उत्पादन गरेको हो। क्याम्पस से विद्यार्थीहरूको प्रयोगशालामा सैद्धान्तिक ज्ञान हो प्रयोगात्मक अभ्यास से सीमित नै रहके यह उत्पादन और उद्यमशीलता संगे समेत जोड़ने उद्देश्य से असीन अभ्यास शुरू करलक जनागिल बा। उत्पादन प्रक्रिया में प्राध्यापक हुकरण के मार्गदर्शन निर्देशन और समेत चौथो सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी हुकरा प्रत्यक्ष सहभागिता रहल बताइल बा। विज्ञान संकाय के विभागीय प्रमुख उप प्राध्यापक डॉक्टर रमा देवी जोशी के अनुसार साबुन तथा मैनबत्ती उत्पादन केलक स्थानीय तथा वनस्पति जन्य स्रोत से समेत कच्चा पदार्थ तैयार कर गिलक हो। कैंपस के प्रयोगशाला में तमाम वनस्पति आवश्यक पदार्थ प्रशोधन करने के साथ ही मेंथा के समेत तेल समेत के उत्पादन करके साबुन के प्रयोग करके बनेलक बटोले बाट विद्यार्थी उत्पादन करलक साबुन के नाम आभा धरलबा साबुन में नीम उसके एलोवेरा लेमन ग्रास उसक मूलतानी मिट्टी ओस्तका विटामिन ए सी ओस्तका ईओ के रिठा समेत सोप बेसो सुगंध केलाक समेत प्रयोगशाला में नहीं तैयार कर गिलक मेंथा के तेल प्रयोग कर गिल डॉक्टर जोशी जानकारी दिले बाटे। संघीय सांसद के दोनों सदन के बैठक आज बैठीबा संघीय सांसद सचिवालय के बैठक प्रतिनिधि सभा के बैठक दोपहर के एक बजे बैठीबा कलश राष्ट्रीय सभा के बैठक फिर दोपहर के सवा एक बजे बैठना कार्यक्रम रहल बा। प्रतिनिधि सभा के आज के बैठक में अर्थमंत्री डॉ सोनी वाग्ले नागरिक लगानी कोष तेसरा संशोधन विधेयक 2083 भुगतानी करबेर फसेउ पहिल संशोधन विधेयक 2083 प्रस्तुत करना संभावित कार्यसूची रहल बा। उसके अर्थ मंत्री डॉ वाग्ले से कर्मचारी संचय कोष दशौं संशोधन विधेयक 2083 पर विचार करी गहना प्रस्ताव प्रस्तुत करल बाटे। उसको बैठक में कानून न्याय तथा सांसदीय मामला मंत्री सोभिता गौतम एशियाली विधेयक के संस्था के समेत परिषद के सदस्यता प्राप्त करने संबंधी प्रस्ताव ऊपर सामान्य छलफल करी गहना प्रस्ताव प्रस्तुत करल बाटे। शंकर के बैठक में सभामुख से राष्ट्रीय सभा के पूर्व सदस्य शुक्रराज केशवी जगत तोमा निधन शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करने कार्यसूची रहल बा। उसके राष्ट्रीय सभा के बैठक में प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के आर्थिक वर्ष 2080/81 के वार्षिक प्रतिवेदन पेश करने बाटे। उसके राष्ट्रीय सभा में प्रधानमंत्री शाह विधेयक विधायन व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन सहित के प्रतिनिधि सभा मन से संदेश सहित के प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जगैना संबंधी विधेयक 2083 ऊपर छलफल करी गहना प्रस्ताव प्रस्तुत करना संभावित कार्यसूची रहल बा। ई प्रस्ताव पर सभा में छलफल करके पारित करना कार्यसूची रहल संघीय सांसद सचिवालय से जनायल बा। खोज खबर में फेन से विश्राम विश्राम पाछे फेर से भी सुनते रह सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
6: टीकापुर नगरपालिका को आयरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम संबंधी सूचना।
7: टीकापुर नगरपालिका अन्तर्गत रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूमा 10 वर्षदेखि 19 वर्षसम्मका किशोरीहरूलाई आइरन तथा फोलिक एसिड खुवाउने कार्यक्रम साउन 4 गतेदेखि 13 हप्तासम्म नियमित रूपमा रहेको ब्यौरा सरकारवालाहरूलाई यसै सूचना मार्फत जानकारी गराइन्छ।
6: टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर।
8: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकलमा जाइस त
9: वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
8: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई को यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
9: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
10: याद करबी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दोसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नै हुईल घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
11: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
0: विश्राम पाछे फेर से स्वागत बा। विश्व हिन्दू परिषद नेपाल के सुरपाशिम प्रदेश का आयोजन में तेसरो रक्तदान कार्यक्रम रहल बा। मानवीय सेवा के भावना सहित के आयोजित कार्यक्रम में 16 महिला 34 पुरुष करके 50 जने रक्तदान करल बाटे। कार्यक्रम में 8 जन के जीवन में समेत पहल पटक रक्तदान करल बतागिल बा। रक्तदान प्रति सचेतना अभिव्यक्ति करती सामाजिक सेवा में योगदान पुगेन उद्देश्य से आयोजना करगिल कार्यक्रम के उत्साहजनक सहभागिता रहल बतागिल बा। भारतीय बजार में चीनी के मूल्य बढ़ल पाछे प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्र में उपभोक्ता में पड़ल बा। पाछक कुछ समय हर भारतीय बजार में चीनी के मूल्य बढ़ल पाछे उपभोक्ता प्रत्यक्ष मार में पड़ल हुए। भारतीय बजार में प्रति किलो 90 रूपया में खरीद करते अलग के वहां के उपभोक्ता हुकरा पाछक समय में मूल्य वृद्धि के कारण प्रति किलो 130 रूपया सम खर्च करना बाध्यता हुई बाटे। बेलौरी नगर पालिका 3 के स्थानीय जगुराम दंगौरा से भारत मन से लान गिल चीनी यहां के पसल मन से प्रति किलो 90 रूपया में समेत खरीद कर त्यायलो अब्बा 130 रूपया में समेत तिरे पर्ति रला गुनासो करलवाट स्थानीय लोकेन्द्र चौधरी फे प्रति किलो 40 रूपया में मूल्य बढ़ल पापे चीनी के प्रयोग समेत घटाएल बटैले बाट भारत में से लान गिल चीनी भन्सार तिरके यहां के उपभोक्ताओं प्रति किलो 90 रूपया में उपलब्ध करफेन मूल्य वृद्धि के कारण 130 रूपयासम बिक्री करे पर्लक। कलकत्ता के व्यवसायी मणिराम समेत चौधरी बटोले बाट सुदूरपश्चिम भर हाल कंचनपुर में दुई स्थान में चीनी मिल संचालन बा दर रेट नै मिल्लक कारण भारत मन से चीनी लान के बिक्री कर पर्न बाध्यता रहल वहां के व्यापारी बटोले बाट। विगत में भारतीय बजार में प्रति किलो 70 रूपया पर्न चीनी यहां चीनी मिल मन से समेत 90 रूपया में खरीद कर पर्न उपभोक्ता हुक्रा नै रुसेलक कारण छिमेकी मुलुक मन से चीनी खरीद करके लाने पर्न अवस्था रहलक। व्यवसायी हरीश थापा बटोले बाट। यही समाचार संगे खोज खबर आयल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। टीकापुर नगर पालिका के वार्ड स्तरीय भू उपयोग योजना तैयारी के विषय में छलफल। टीकापुर माफे भू उपयोग योजना अनुसार जगह वर्गीकरण करती। टीकापुर में चोरी की घटना बढ़ती। चोरी करने उद्देश्य से ब्लॉक नंबर 6 में दुईठो घर में तोड़फोड़। देश में कुछ स्थान में भारी वर्षा के संभावना। सुदूरपश्चिम कर्णाली प्रदेश में भर मध्यम पानी पर्ना। कैलाली बहुमुखी कैंपस के विद्यार्थी से बनाने आभा हर्बल साबुन और मोमबत्ती। लिटा बखलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई। सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनते विराम।

0: जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 द्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
1: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: दाजु हेर्नुहोस् न, भाउजूलाई बिरामले च्याप्दै गइराखेको छ। तपाईँ भने यहाँ कुनै मतलबै नगरी बसिराख्नु भएको छ। भाउजूलाई कतै के भइहाल्यो भने रुनु होला पछि धुरु धुरु।
2: के गरौ त म, यत्रो उपचार गरिसके, कति ठाउँमा लगिसके, तर निकै हुन्न।
1: दाई बरु एकपटक टिकापुरको सत्कार मेडिकल सेवामा जचाउने हो कि के थाहा, त्यहाँ उपचार भइहाल्छ कि।
2: तैले भन्छस् भने लौ जाम न त त्यो सत्कार मेडिकलमा एकपटक।
3: सत्कार मेडिकल सेवाका खास सेवाहरू: ओपीडी सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, एक्सरे सेवा, ल्याब अर्थात् प्रयोगशाला सेवा, ईसीजी सेवा, मेडिकल सेवा, ईएनटी सेवा, प्लास्टर सेवा। बिरामी जाँच्ने समय बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म। डाक्टर हेमन्त स्वार, टिकापुर ब्लक नम्बर 7, गोल पार्क नजिक गुम्बा रोड, टिकापुर। फोन नम्बर 0191-560-095, मोबाइल नम्बर 98-484-27-359।
4: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दी ध्वज आगिली न अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त।
5: अरे गहना बनैना त हो, दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु, कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ।
4: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका आन्छे कि कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी।
5: ए ले ले ठीक है बा, चल हाली भात वट खाई आऊ, जाएका हूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई। सामुएल ज्वेलर्स, बलभद्र चौक, टिकापुर। प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार।
4: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए, रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए, वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए। मोबाइल नंबर 98-684-41-208 और 98-486-39-261।

होला एल्भिस एल्भिरा त्रिरस सिद्धार्थ चोक गालप सुपरमार्केट अगाडि टिकापुर कैलाली संचालक सुजिता श्रेष्ठ सम्पर्क नम्बर 9811 67

जेगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समन्नत समाज के लक्ष्य मा बेसी आवाज सामुदायिक रेडियो टीका प्रेफन 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम मझेरी का सलाह के बैठल सबको रेडियो प्रेमी मैगर श्रोता संग्रह को स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहटो मिशन और मिके भाई टेक्मी बैठ के साथ देते बाबू रत्नापुर मगर और मई बात अपनी अपने संग्रह मैं मिशन संघारी कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी मैं एकदम आराम बाटो अपने एकदम आराम हुई कना भरपूर असने बटो जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बिजी में व्यापार में यात्रा में जहां रहे से कार्यक्रम में सहभागी जने भी ओकलक हमार लाइन खुला बा 091-5-61-255 अर्थात 0915-61-255 लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में आई भी और अपने को हमार रमायल सहभागिता रही तो फटाफट से ही डायल करते कर भी कार्यक्रम में सहभागी जने टेकर भी अपने को हमार रमायल सहभागिता रही रमायलो गफ रही रमायलो बातचीत रही का नाम है जानकारी करती बटो तो कार्यक्रम में चाहिए विशेष करके आज दिन कोई भी टैलेंट गीत गजल भावना मुक्तक चुटकिला शायरी शेर चिड़ी चुरुगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नक्कल केकरो कैरिकेचर कोई भी प्रतिभा कोई भी टैलेंट कोई भी चीज अपने को सुने ना मन हुई कोई भी भाषा में कल श्या मन चाहिए कॉल करी 091-5-61-255 के लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायल कर भी कार्यक्रम 1:45 बजे सम यात्रा कर भी संगे संगे साथ में मजा मजा की संगीत हमने सुने नहीं बाटी तो कार्यक्रम की शुरुआत में श्री गणेश कर एक रमायलो गीत से गीत के पास में बांटू डायल चाहिए करते कर 091-5-61-255 के लाइन खोलेगा तब समय इंजॉय करी रमायल करी गीत से

हजुरी तन मन सब तोहारे हो काहे कि तुमर जान हो रमाइलो गीत कार्यक्रम में जोली अपने कन खेला कार्यक्रम में बाटू मामी शर्मा के बेट साथ देते बाबू रत्नापुर मगर और यह रेडियो टीका पर एफएम 101.5 इंटरनेट के पहुंच हुई गल से हमन www.tikapureffm.org हमारे वेबसाइट मार्फत कल से मोबाइल एप टीकापुर एफएम एप्स अवस्थ के चाहिए हमारे पात्र नेपाली पात्र मार्फत भी अपने सुन भी सुन सकती अपने इंटरनेट के पहुंच बा कल से वेटाऊ से एंड्रॉइड मोबाइल हुई कल से एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर सकती अपने टीकापुर एफएम एप्स या नेपाली पात्रो मार्फत या हाम्रो पात्रो मार्फत मा फेरि आफ्नो के सुनि सक्थे मतलब जिन जे जहाँ जसिक चाहिँ सहज हुई उहे तरिका से आफ्नो गामा सुनि सक्थे का नाम आफ्नो गन जानकारी कति बाटो तो जे जहाँ हुई भी कार्यक्रम में सहभागी जनैते कर भी कार्यक्रम आइते कर भी अपन टैलेंट अपन प्रतिभा कोई भी गीत सुनैना मन हुई जस्ता किनो गजल कहना मन हुई किनो मुक्तक भावना चुटकिला कहना मन हुई या किनो केकरो नक्कल करना मन हुई या केकरो चिरै चुरुंगन जानवर की आवाज निकलना मन हुई या मतलब कोई भी मतलब करना मन हुई मतलब सुनना मन हुई कल से आपने मन चाहिए सुना एक लख मन कल कर भी सुने 91-5-61-255 अर्थात 09-1-5-6-1-2-5-5 लाइन एकदम खुला बा फटाफट डायल कर दिया कार्यक्रम में सहभागी जनैविका नाम आप जानकारी करती बारू तो कार्यक्रम में आईटी कर भी कार्यक्रम में सहभागी जनैते कर भी कार्यक्रम में चाहे अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही का नाम आप जानकारी करती अब अति पर एक ठावर अपने कन के लग चाहे रमाइलो गीत जोड़ गीत के पास में फिर चाहे डायल चाहे करते कर भी सुन 91-5-61-255 लाइन खुलेगा

हजुर, काहे सताई तो काहे तरफाई तो बिल्कुल रमाइलो बिजुली कार्यक्रम में अपने हुकान के लागि गीत कार्यक्रम में भर्खर रेडियो खोलल विकासी रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज अस्तिक हमार वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टीकापुर एप्स हमारे पात्र मार्फत फेसबुक इंटरनेट के पहुंच संघारे हुए और जहां इंटरनेट जहां अपने ठन नहीं जहां रेडियो टी पार्टिकल से रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मोबाइल सेट मार्फत फिर अपने 101 मेगाहर्ज मार्फत सुने से ठिकानामें जानकारी करम और संगारी कौचो कथी बाटी कसी के समय बीती बा कसी के अपने होंगे इनके दिन सारे चलती बा कार्यक्रम में सही सहभागी जनाई सुनने का 9951 अर्थात 09156125 लाइन हमें अपने होंगे खुला कैले बाटी कोई भी चैलेंज अपने होंगे ठन हुई कल से हम चाहे कॉल कर पर्ना भी सुनने का 9551 तो कार्यक्रम में भी कल से एकदम हमारे अपने के संगे गप करप का नाम अपने जानकारी करती बाटू तो फटाफट चाहे डायल करी कार्यक्रम में सहभागी जनाए के लगा कार्यक्रम में चाहे अपने घर हमारे रमाइलो गफ हुई रमाइलो बातचीत हुई और कार्यक्रम में चाहे कुछ चोटी नहीं हिचकिचा कि मैं फिर कोई भी टैलेंट सुनाई मैं फिर कार्यक्रम में चाहे अपन प्रतिभा सुनाई जस्ता गीत गजल भावना मुक्त चुटकुला शायरी शेर चिड़ै चुरुगन की आवाज जानवर की आवाज नेतन के नकल के कैरिकेचर कोई भी टैलेंट कोई भी प्रतिभागी कल से कार्यक्रम में सहभागी जनाइम का सोच बना के कार्यक्रम में चाहे आई शक्ति का नमय अवलोकन जानकारी करती बारू तो लगभग लगभग 1:45 बजे से अपने को चाहे हमारे संगे संगे यात्रा कर भी का नमय जानकारी करती फैन से गीत जोड़प अपने के लिए गीत के बाद समय नहीं बारू डायल करते कर भी 0915-61-255 अर्थात 09156125 लाइन खुले पर तस्तम के लिए इंजॉय करी ये रमाइलो गीत

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, कहा कना हो कहा कना हो। बाबा के वस्त बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो, ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जलम भर भर बराई थी रहत।
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उद्योग में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटास गोर झोला आनल बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में। रत गई यहाँ झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223।
3: लो इतनी छिटो आमा बन लागो तो
4: मेरे साथी बाल विवाह गरेर आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अन्योलमा पारी 20 वर्ष मुनि हामी कसैले पनि विवाह वा भागी विवाह नगरौ।
5: जानकी गाउँपालिका 9 नम्बर वडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
6: महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपालीजनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
7: ए साथी, तीज आउन लाग्यो, यसपालि तीजमा कस्तो लुगा लगाउने सोच बनाएकी छौ?
6: सोच त धेरै छ नि, तर मन पर्ने डिजाइन र राम्रो लुगा कहाँ पाइन्छ भनेर खोज्दै थिए।
7: त्यसो भए पवनदेव इन्टरप्राइजेस जाउँ न, तीजका लागि विभिन्न डिजाइनका आकर्षक लुगाहरू आइसकेका छन्।
6: हो र, त्यहाँ लेडिज सुट, कुर्ती, सुरुवाल पाइन्छ र?
7: पाइन्छ नि, तीजमा आफूलाई मन पर्ने लुगा छान्न पवनदेव इन्टरप्राइजेस एकपटक अवश्य पुगाउन।
6: त्यसो भए यसपालिको तीजको किनमेल पवनदेवी इन्टरप्राइजेसबाटै गरौँ नै है।
7: तीजको उमङ्ग, नयाँ पहिरनको रङ्ग, पवनदेव इन्टरप्राइजेस सिद्धार्थ चोक नगरपालिकाको कार्यालयको कोठा नम्बर 54, सञ्चालक पवनदेवी तिमिल सेना, सम्पर्क नम्बर 98485050027 र 98485059।

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था रिलायबल लाइफ सदैं भरी लाए।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब पाछा से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
2: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो नी करत का कहना हो का
1: मिस्तरान बर्दन हो कना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए
3: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436।
4: लौन साह्रै भोक लाग्यो भने आज त तन्नै नास्ता गर्न मन लागिरहेछ हैन यो टिकापुर बजारमा मिठो चिकन राइस कहाँ पाइन्छ होला
5: साँच्चै हो र भोक लागेको मलाई पनि चिकन चाउमिन खान मन लागेको छ त्यसो भए जाउँ न लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा त्यहाँ त एकदम शुद्ध सफा र मिठो परिकारहरू पाइन्छ
4: ए हो र त्यसो भए जाउँ न जाउँ सँगै जाउँ तन्नै खाएर आउँला
5: तपाईलाई पनि नास्ता खान मन छ भने लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरलाई सम्झिनुहोस् लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घरमा चिया नास्ता चाउमिन चिकन राइस चिकन चाउमिन छोला समोसा दुध दही घिउ चिसो लगायतका विभिन्न किसिमका खाजाको आइटम पाइन्छन् एकचोटि सेवा गर्ने मौका दिनुहोला
4: लक्ष्मी कटेज एन्ड खाजा घर सामुदायिक एफएम नजिकै प्रोप्राइटर लोकराज खनाल सम्पर्क नम्बर 9848519764।

हजुर, बिल्कुलै लम्मा व्यापारिक विश्राम के पाछ पुनः स्वागत भयो कार्यक्रममा। कार्यक्रममा भर्खर रेडियो खनल विकल्प यो रेडियो टिकापुर एफएम 1 MHz जस्तो कि हाम्रो वेबसाइट www.tikapurfm.org मोबाइल एप टिकापुर एफएम एप्स हाम्रो पात्र मार्फत पनि सुनि सक्थे। अरू सँगै सुन्दी बाटी कार्यक्रम मझेरी मझेरी का नैसी नांगना हो जहां अपने कुरा हमारे भेट होकर रमाइलो गप करना और अपने टैलेंट सुनना। तो हमने एकदम लम्बा व्यापारी विश्राम के पास पुनः स्वागत करते फैंस एक ठाव गीत जोड़ा गीत के पास मैंने बाटू रेडियो स्वर्ग कहो बनाई देवी तस्तम के लग इंजॉय करी ई रमाइलो गीत से।

0: कुनै प्रकारको रसायन केमिकल नमिसाइएको शुद्ध र प्राकृतिक स्वास्थ्य श्री चितवनको अत्याधुनिक मिलमा उत्पादित शुद्ध तोरीको तेल स्वास्थ्य श्री रिलायबल एग्रो नेपाल पब्लिक लिमिटेडका प्रिमियम उत्पादनहरू।
1: बाबु ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
2: मैं नहीं जाऊँ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
1: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तो यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरानी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
2: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
3: याद कर भी मनीष मेडिकल हल टीकापुर में प्रत्येक महीना के दूसरा शनिवार काठमांडू के वरिष्ठ छाला यौन कुष्ठ तथा सौंदर्य रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वा लोकेन्द्र लिम्बू से सेवा देती रहल बा। मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आज कहा हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आन लसे तो लड़का सामान निहर
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आन लाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू फसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
4: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
5: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
3: डेलिभरीका लागि
5: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
3: टीकापुर कैलाली
6: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98017106772
4: स्वास्थ्यका लागि पानी
7: हेलो बहिनी कता हो तिमीलाई थाहा छ कि नै सीजी कम्पनीको वाई वाई जिंक 15 रुपियाँमा एक पेटी ₹560 उपहार सहित एक कचौरा पनि पाइन्छ तिमीले कतिमा किन्यौ
8: मैले त एक पेटी चाउचाउ ₹600 किने
7: 600 रुपियाँ किन हाल्नु पर्यो 560 त ब्लक नम्बर 14 रहेको हरिलाल किराना पसलमा ₹15 वाला चाउचाउ पाइन्छ त्यो पनि सीजी कम्पनीको गुणस्तरीय चाउचाउ र त्यस्तै ₹25 क्लासिक चाउचाउ र ₹35 चाउचाउ ₹2500 आउँदैछ नि त्यो पनि हरिलाल किराना पसलमै छ फेरि 500-600 रुपियाँ वाईवाईमै किन हाल्ने 460 मामा चाउचाउ हरिलाल किराना पसलमै पाइन्छ त्यो पनि वाईवाई सीजी कम्पनीको र रिचार्ज कार्ड पनि पाइन्छ भुलेर पनि अरू ठाउँमा नजानुहोस् है होलसेल र खुद्राको दरमा बिक्री गरिनुका साथै क्वान्टिटी अनुसार दर मिलाएर बिक्री गरिन्छ आधिकारिक विक्रेता हरिलाल किराना पसल साथै हिन्दू नारीहरूको महान चाड हरितालिका 30/2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ
8: हरिलाल किराना पसल ब्लक नम्बर 14 पार्क रोड टिकापुर कैलाली संचालक प्रदीप बहादुर विष्ट सम्पर्क नम्बर 98 48 40

0: सुरक्षित जीवन जीवन जीवन बीमा जरूरी था। रिलायबल लाइफ सधैं भरिलाई।
1: छी फे चर्पी भर गिल का करना हो का
2: चर्पी भरल से फिर का चिंता आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई में फोन करी आ बा का सर सफाई कई दी ही।
1: फोन नंबर कटा हो तो
2: ली डायल करी 97 6 20 20 300।
1: हेलो आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई हो? महीन राजापुर बाजार में टैंकी सफाई करना बा।
2: अपनों कंठे टीकापुर जानकी जोशीपुर भजनी सत्ती राजापुर गेरुआ वो लमकी मना सेफ्टी टैंकी गोबर गैस और रिंग वाला टॉयलेट सर सफाई कर परितल से आदित्य सेफ्टी टैंकी सर सफाई सेवा हना समझावे। संचालक शेरबहादुर थारू। संपर्क नंबर 97 6 20 20 300 और 98 6 56 92 026।

सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजेक 5 बजेक थारू भाषा खोज खबरमा अपनौकन स्वागत बा। खोज खबर समय गीता चौधरी राम राम। अपनौकरा अब सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 MHz के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप से हमारो पात्रो और नेपाली पात्रो में फिर सुनती रह बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से रैथाने जात के बीया परिवर्तन हुई बेर किसान न अन्न भंडारण व बीया ढर समस्या किसानों का हरेक वर्ष बाजार से बीया ख्वाज बाध्य दलित समुदाय के अधिकार सुनिश्चित कर सरकार गंभीर रहलक मुख्यमंत्री भट्ट के कहाई नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जोगैना संबंधी विधेयक 2083 पारित और टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के सक्षम सदस्य के निःशुल्क बीमा। आप खोज खबर विस्तार में रैथाने जात के बीया में परिवर्तन हुई बेर किसान अन्न भंडारण व बीया ढर समस्या हुई बा बीया परिवर्तन हुई संग थारू समुदाय अन्न भंडारण का ना तरीका फे बदलल बाट पाछक समय अन्न भंडारण का ना तरीका कलहक नाही बीया में हुईलक परिवर्तन संग कृषक हुक र अन्न बाली में विषादी के प्रयोग कर बाध्य फे हुई बाट समय बीटलसंग थारू समुदाय में अन्न भंडारण का ना तरीका मफे परिवर्तन आयल बा पहिला थारू समुदाय में अन्न भंडारण माटी के डेरी

समुदाय आलू के बिया कोल्ड स्टोरमा धर्ना, खैना धान कठोक भखारीमा धर्ना, टिनके ड्रपमा ढर लागल बाट धानफे हाइब्रिड जातके धान लगाई लागल पाछा घरमा अन्न भण्डारणमा समस्या आयल बा। घरमा ढलक बिया से काम निकरत हरेक वर्ष बजार से धानके बिया लौ बिया किना परन्ना भग्रयाके तारा चौधरी बटुलाबाट अन्न भण्डारण गर्ना तरिकामा परिवर्तन आयलसँग किसान घरमा धर्ना अन्न मन विषादीके प्रयोग गर लागल बाट पाछा अब लौ लौ जातके बिया बजार से लानक खेती करबेर अन्न भण्डारण हो बिया जोगैना समस्या रहलक जानकी गाउँपालिका छ जगतपुरके जोग बहादुर चौधरी बटुलाबाट। वस्ताङ्कन जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 सुवर्णपुरके भागीराम चौधरी फे बजार से बिया किनके ननलको घर मन खाइक लागि धान डरबेर फे समस्या हुइना कलक बटुलाबाट। पुराना परिपाटी मन नै रहक परिवर्तन हुइना मजा हुइल से फे परिवर्तन के बहाना मन पुरान हन मस्ती जाइबे लौ लगाइबे धुर मल ओ विषादी के प्रयोग करना मजानी हो यी विषयमा ध्यान देना जरूरी देख जाए। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ व्यापारी व्यवसाय हुकन के निशुल्क दुर्घटना बीमा करलबा। निशुल्क दुर्घटना बीमा के लाग टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ प्रोटिफ माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड बीच आज द्विपक्षीय सम्झौता हुइलबा। सम्झौतामा संघके उहर्से अध्यक्ष सन्तोष खट्का व इन्स्योरेन्स के उहर्से शाखा प्रबन्धक प्रकाश रेग्मी हस्ताक्षर करल हुइलक। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघके महासचिव प्रकाश तिमल सिन्हा जानकारी देलबाट सम्झौता अनुसार संघमा दर्ता हुक नवीकरण हुइलक व्यापारी व्यवसाय हुक र 1,00,000 रूपियाँ बराबरके निशुल्क दुर्घटना बीमा लाभ पौयाबाट। यी सम्झौता एक वर्षकै लागू हुइना व निशुल्क बीमा कार्यक्रम से ऐना वर्षमा नफे निरन्तरता पैयामा छुट्टी व्यवसाय हुक र दुर्घटनामा परबेर हरेक चो समस्या ऐना करलक कारण यी से कुछ सहज हुइना व ऐना दिनमा अन्य कार्यक्रमके लागि फे संघ आग भतिरलक। महासचिव तिमल सिन्हा बटुलबाट निशुल्क दुर्घटना बीमा अन्तर्गत व्यापारी व्यवसाय हुक र दुर्घटना हुक मृत्यु हुइलमन 60% बीमाङ्क रकम पैना, क्रिया खर्च बापत बीमाङ्क रकमके 10% वा 10,000, घाइटेके अवस्था हेरक बाढ़ी मन 60% ओ घाइटे होक दवाई उपचार कर पर्लक अवस्थामा 1,00,000 रूपियाँ बराबर के दवाई खर्च पौयाबाट। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ पहिलचो व्यापारी व्यवसाय हुकन के निशुल्क दुर्घटना बीमा करलबा। बीमा कम्पनी के शाखा प्रबन्धक रेग्मी व्यापारी व्यवसाय हुक र सहज बीमा दावी कर सेक्ना ओ हुकन बीमा दावीमा कोनो अप्ठ्यारो निहुना बटुलबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश के मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट प्रदेश सरकार वादी व दलित समुदाय के अधिकार सुनिश्चित गरोस गम्भीर रहलक बटुलबाट। सुदूरपश्चिम प्रदेश वादी उत्थान विकास समिति के सम्मेलनमा बोल्ती मुख्यमन्त्री भट्ट प्रदेश सरकार गरीब असहाय व भूई मान्छे के भूई मनैनके सरकार के रूपमा न स्थापित गर्नकै ऐना बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणके तयारी हुइतिरलक बटुलबाट। महिला, गरीब, असहाय, बालबालिका, नवयुवा, वादी तथा सुकुम्बासी समुदाय मैत्री सरकार निर्माणके सँग सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था प्राथमिकतामा धर्क बजेट निर्माणके तयारी समेत हुइदिरलक उहाँके कहाइबा। भट्ट राज्यमा आमिन फे असमानता व विभेद कायम रहलक बटुटी वाकर अन्त्यक लागि राज्य करपना धुर काम बाँकी रहलक उल्लेख गर्नबाट। 10 वर्ष जनयुद्धस्य दलित तथावादी समुदाय उपर हुइना धुर प्रकारके विभेद अन्तकर महत्वपूर्ण भूमिका खेलक उहाँके कहाइबा। मुख्यमन्त्री भट्ट आइना बजेटमा दलित अधिकार दशकके रूपमा विशेष कार्यक्रम लड्न तयारी रहलक बटुलबाट। दलित समुदाय उपरके छुवाछुतपूर्ण रूपमा अन्त्य गर्दै हुकनके आर्थिक तथा सामाजिक जीवनमा परिवर्तन लड्नकै कार्यक्रम तथा आयोजना आग बढ़ना उहाँ बटुलबाट। प्रदेश के औचित्य पुष्टि हुइना कैकन बजेट निर्माण करना उल्लेख करती मुख्यमन्त्री भट्ट वादी समुदाय के समस्या समाधान कर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहलक बटुलबाट। राज्य आमिन फे धुर विभेद के अन्त्य कर बाँकी रहलक बटुटी उहाँ सक्कु समुदाय के पहिचान आत्मसम्मान व अधिकार सुनिश्चित करपनामा जोड़ देलबाट। दलित समुदाय भित्र रहलक विभेद व छुवाछूत के समेत अन्त्य कर आवश्यक रहलक उहाँके कहाइबा। समानता, सामाजिक न्याय व सम्मानमा आधारित समाज निर्माण के लाग प्रदेश सरकार ऐना बजेट मार्फत विशेष पहलकना मुख्यमन्त्री भट्ट बटुलबाट। खोज खबरमा एक घरिक विश्राम पाछ नेनीबाटी सुन्ती रही सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।

0: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने, बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने, साइकल होस्या गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ।
1: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
2: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग, दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ।
3: सुन्नुहोस् न, यसपालि तीजका लागि नयाँ गहना किन्ने सोच बनाएकी छु।
4: हुन्छ नि, तर कहाँबाट किन्ने त?
3: अब किन टाढा जानु, सिर्जना सुनचाँदी पसलमा जाऊ न, त्यहाँ आकर्षक डिजाइनका सुनचाँदीका गहना पाइन्छन् रे।
4: ए हो र, गुणस्तरीय गहना र उचित मूल्य पनि हुन्छ त?
3: हुन्छ नि, आफूलाई मन परेको डिजाइन छान्न पनि पाइन्छ, अनि विश्वासिलो सेवा पनि।
4: त्यसो भए आजै जाउँला नि।
3: ल, अरूलाई पनि भनौँ है।
4: सुनको चमक, आकर्षण र विश्वासको साथका लागि सम्झनुहोस्
2: सिर्जना सुन चाँदी पसल, तपाईँको रोजाए हाम्रो जिम्मेवारी।
4: सिर्जना सुन चाँदी पसल बलभद्र चोक नगरपालिका शिव मन्दिरबाट सरकारी अस्पताल जाने बाटोमा, सञ्चालक रूपलाल सुनार, सम्पर्क नम्बर 98095443893।
0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
0: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
5: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
0: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
5: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
5: ईसीजी सेवा,
0: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
0: फोन नम्बर 98484 27359 र 98482 43 59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
6: के तपाईँलाई थाहा छ,
7: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
6: हो र?
7: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
6: अनि
7: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
6: के छ त विकल्प?
7: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
6: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
7: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
6: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
7: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाइ शाखा टिकापुर कैलाली।
8: खोज खबरमा फेरफेर स्वागत बा। राष्ट्रिय सभासे नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जोगाइना सम्बन्धी विधेयक 2083 सर्वसम्मत लेखन पारित हुल्बा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहके उहर्से कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोभिता गौतम प्रस्तुत करल विलग विधायन व्यवस्थापन समितिके प्रतिवेदन सहित प्रतिनिधि सभासे सन्देश सहित प्राप्त नेपाल विशेष सेवा ऐन 2042 के साबिक के व्यवस्था जोगाइना सम्बन्धी विधेयक सभा सर्वसम्मत लेख पारित कलक हो। राष्ट्रिय सभाकी औरो बैठक भदौ 31 गते बुधबार 1:15 बजे बैठुयाबा। उद्योग मन्त्री गौरी कुमारी यादव पर्से राजीनामा दिहलबाट। उहाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह समक्ष राजीनामा बुझेलक उहाँके संचार संयोजक कमल चौलागाई जानकारी देलबाट। मन्त्री यादव बुधबार संसदीय समितिमा ग्यास उद्योग हुकनहन पाता फर्कैना कैकन विवाह सातपट अभिव्यक्ति देहल्पा छ। उहाँ अभिव्यक्ति प्रति उद्योगी हुक्र आपत्ति जनैती प्रधानमन्त्री समक्ष समेत ध्यानाकर्षण करैल रहल। बिहान उद्योग समिति के बैठक में उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री गौरी कुमारी यादव कल आब हुईलक गैस अभाव उद्योग से उद्योगी से करबेर हुईलक हो गैस उद्योगी के पाता नई सैकल समय गैस अभाव सहसनी हुई। वहां ओट्रकल नाही ओट्रमकल निरोकल हाल संचालन में रहलक 58 ठो गैस उद्योग के लाइसेंस खारिज करपना समेत बटुल रह। कैलाली से हीरो खैरो हिरोइन व अनियन्त्रित ट्याब्लेट सहित दुईजना पक्राउ परलबाट। कैलाली के लम्कीचोहा नगरपालिका चार खल्लासे अवैध लागू औषध खैरो हिरोइन 300 मिलीग्राम व नियन्त्रित लागू औषध ट्रामाडोल 29 ट्याब्लेट एविल 28 ट्याब्लेट सहित उह ठाउँ बैठना 22 वर्षीय शंकर देवा व 20 वर्षीय पूर्ण बहादुर चन्द पक्राउ परलखुइट। डुनुजन इलाका प्रहरी कार्यालय लम्की कैलाली से खटगिलक प्रहरी टोली चेक जाँच करबेल लागू औषध फेला पार्क पक्राउ कलक जनागिल्बा। खोज खबरमा फेरफे विश्राम विश्राम पाछैनिनीबाटी सुन्ति रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
9: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
9: ए हो त, कहाँ पाइरहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
10: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
9: अब त म ढुक्क।
11: मिलन आल्मुनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
10: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी टिकापुर कैलाली।
12: आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। छाला यौन तथा कुष्ठरोग विशेषज्ञ डाक्टर आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा
13: असोज 3 गते पहिलो शनिबारका दिन आउने भएकाले
12: समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक टिकापुरमा उक्त दिन दिइने सेवाहरू छालामा एलर्जी आउने, चिलाउने, दुख्ने, घाउ, दुबीको समस्या, लाटो र फुस्रो दाग देखिने, पुरानो भन्दा पुरानो छालाको घाउ ठिक नहुने समस्या, इक्जेमा, सोब्रियासिस, गोलो दाग, बारम्बार उपचार गर्दा ठिक नहुने, छाला सम्बन्धी रोग समस्या, पुरुष र महिलाको गुप्ताङ्गमा दाना आउने, चिलाउने, धातु खट्ने, सेतो पानी बग्ने, यौन दुर्बलता, शीघ्र पतन जस्ता समस्याको जाँच र उपचार गरिने, कपाल चिलाउने, चाया पर्ने, डेन्ड्रफ, कपाल झर्ने, रौ नजम्ने, तालुको रौ झर्ने समस्या, अनुहारमा चाया, डन्डीफोर, चिरा परेको, फुस्रो र कालो दाग देखिने समस्या, अनुहार खस्रो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने, अनुहार बाङ्गो हुने समस्या।
13: डाक्टर आउने दिन असोज 3 गते पहिलो शनिबार।
12: आरोग्य मेडिकल एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर एक कैलाली। सम्पर्क नम्बर 9868000008 र 9825677772।
8: खोज खबरमा फेरफे स्वागत बा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतकै कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकै बैठकमा सांसद हुक्र जलवायु परिवर्तनकै चुनौती व संकटकै सामना गर्न भू राजनीतिक सहकार्य सहित अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास आवश्यक रहलक बटुलबाट। समितिकै आज बैठक बैठकमा सांसद हुक्र भोटे कोशी व त्रिशुली लड्यामा ऐलक बाढीसे कृषि तथा प्राकृतिक स्रोतमा भारी क्षति पुग्लक मोर्से लद्या व पर्वत संरक्षणकै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा पहल करपना बटुलबाट। विपद पाछाकै वातावरणीय पुनस्थापनाकै सँग अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय व क्षतिपूर्तिकै मुद्दा सशक्त रूपमा उठाइपर्नामा सांसद हुक्र जोड देलक हुइट। बैठकमा वातावरण विज्ञ हुक्र नेपालमा विपद पाछ कृषि किसान हुक्र किसानकै निर्भरता व विपद जोखिम सामना गर्न क्षमताकै आधारमा क्षतिपूर्ति तथा पुनस्थापनाकै लक्षित लगानी करपना सुझाव देलबाट। कृषि तथा विपद नीति व जलवायु विपद मार्फत वित्त मार्फत विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा थानशीलता निर्माणकै काम हुन प्राथमिकता दिएपना समेत विज्ञ हुक्र बटुलबाट। बैठकमा कृषि वन वातावरण
14: पर्यावरण मन्त्रालय के सहसचिव फुकनके बाढ़ी के कारण लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज सहित रसुवा व नुवाकोटके जैविक विविधता दुर्लभ वन्य जन्तु तथा 461 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति पुग्लक जानकारी गराइल रह। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत कृष्ण भिरके अवरोध सड़कमा भदौ महिना भित्र यातायात सेवा सञ्चालनमा लन्नाकैक सरकार निर्माण कार्य तीव्र पर्लबा। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह भदौ 17 गते प्रतिनिधि सभामा सम्बोधनकै क्रममा बटवाइल अनुसार भदौके अन्तिमसम्म निर्माण सम्पन्न कैक यातायात सहज बनाइना लक्ष्य केसँग काम आग बढ़ागिलक हो। कृष्ण भिरमन पहाड़ काटकन करिब 250 मिटर लवर ट्र्याक निर्माण कर 10 थो मेसिनो 30 थो कर्मचारी खटागिल्वा। सशस्त्र प्रहरी नेपाल निर्माण क्षेत्रमन फ्ल्याट लाइट जडान कर देहेल्वा। ज्याकर कारण रातके समयमा समेत कैक दैनिक 12 थेसे 14 घण्टासम्म काम हुइटिरहल्वा। लवर ट्र्याकके सँग पहिरो रोकथामके लागि उपर र टर दुनु ओहर तीव्र गतिमन काम हुइतिरहल्वा। कलसे याकर मार्गके अन्य 5 थो ठाउँमा हुइलक पहिरो पन्छैना व दुनु ओहर यातायात खुलैना काम फे सँगसँग हुइतिबा। यहे भदौ 10 गते बाढ़ीके कारण कृष्ण भिर क्षेत्रके सड़क कमजोर बनल रह। वाकर पाछा भदौ 14 गते भोटेको सिके बाढ़ी सड़क भासल पाछ ओह दिन सरकारी टोली से स्थलगत निरीक्षण कैगिल रह। वो प्रधानमंत्री तथा पूर्वाधार मंत्री तत्काल मरमत बारे छलफल कर रह। यह क्रम सड़क विभाग को नेपाल जियो टेक्निकल सोसाइटी के प्राविधिक हुक्र 4 दिनसम्म दूरत अध्ययन कैक कृष्ण भिरके पहाड़ काटका 250 मीटर लोअर ट्रैक बनैना पहिल विकल्प सुझाव दिल रह। यह समाचार के संग खोज खबर ओराइल अंतिम जेती जेती खबर के मुख्य शीर्षक फिर से। रैथाने जात के बिया परिवर्तन हुई बियर कृषकन अन्य अन्न भण्डारण और बिया धरना समस्या किसान होकर बरसेनी बाजार से बिया ख्वाज बाध्य। दलित समुदाय के अधिकार सुनिश्चित कर सरकार गंभीर रहलक मुख्यमंत्री भट्ट के कहा। नेपाल विशेष सेवा 2042 के साबिक के व्यवस्था जोगैना संबंधी विधेयक 2083 पारित। टीकापुर उद्योग वाणिज्य संघ के सक्कु सदस्य के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। लीत आवकला थारू भाषा खोज खबर अत्र और समाचार 6 बजे नेपाली भाषा मन खोज खबर सुन सिक्बी। आवक खोज खबर से प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद देती। मई गीता फी विदाई दू सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम सुनती रवि राम राम।
15: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको पावन अवसरमा सम्पूर्ण ग्राहकवर्ग नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै लक्की ट्रेडर्स टिकापुरमा एनटीसी र एनसीएलको सिम कार्ड, ई सिम पाइनुका साथै फोटोकपी, लिमिनेसन, प्रिन्ट, ब्याट्री र ब्यालेन्स ट्रान्सफर पनि गरिन्छ।
16: हराएको मोबाइल एमडीएस प्रणालीद्वारा दर्ता र मोबाइलका सम्पूर्ण पार पूर्जा पाइनुका साथै मर्मत पनि गरिन्छ। साथै 5 मिनटमा पासपोर्ट साइजको फोटो निकालिन्छ। मोबाइलमा फोल्डर हाल्ने र बुफर पनि उपलब्ध गराइन्छ।
15: लक्की ट्रेडर्स सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम नजिकै नेपाल टेलिकम जाने बाटोमा सञ्चालक खगेन्द्र चौधरी। सम्पर्क नम्बर 9868551000।
17: आइ हो बड्डो घर कहिया सिज्जैब? पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल।
18: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू। मिलबो नी करत का कहीं ना हो का
17: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टा फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ रख घूम जाए ता था पाए।
19: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नई बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नई ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
20: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली। प्रोप्राइटर मोहन राज भाट। मोबाइल नंबर 9848541436।
21: तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: हम से अन्ना खेतों से हाथले कटना चार पांच दिन सुखा चार निन्हा छुल रहना पहले धान देना कहूँ धान देना वस्ते ना वस्ते क्या नहीं तो देखें जका देना तो नहीं बिगड़ना आप तो लवो लवो धान फिर लगाए लगला हुना लागल जब हमारा बाजार जुगा से डाल लगला
1: पहला रैथानी जात का धान हरु अंजना आयरेट लटेरा मनसुली लगायत को धान रोपने चलन थियो। रैथानी जात को धान रोप्दा बिउ को लागि समस्या थिएन। घरमा राखेको बिउले काम चल्थ्यो। बाहिरबाट बिउ ल्याउनु पर्ने खोज्नु पर्ने अवस्था थिएन। यो पनि समस्याको रूपमा रहेको छ। फेरि पनि चन्द्री कुमारी चौधरी
0: नाउथल अञ्जना आइरेट लट्यारा मसुली असिनो सिन धान लगाए आप त लवो लवो धान लगाएर घर घर घर बिहान होना एक लाख होना डान से खाम अम्रला से बढ़िया लेना सौ खरी खाम रहा जी करा करें बढ़िया लेना वो धान भी लेना नहीं धारे दवाई में कुछ नहीं धारा सर आपका विशाल जैसे खेतों थे विरोध देना पहले अपने विरोध फिर देना धरा फिर नहीं जमना अब अपने जब धरा विरोध सिद्ध बहुत उठ धरा जामन औसत दिन सिद्ध ले से मर नहीं डर ले से के धान नहीं मिला पहले अपने गुआबर मर डरना वो धान हो जिना
1: पछिलो समय थारू समुदाय ले आलू का बीउ हरू कोल्ड स्टोर में रखने खाने धान काट को भकारी में रखने टीन को ड्रम में रखना थाले का छन धान पनि हाइब्रिड जात को धान रोपना थाले पछि घरमा अन्न भण्डारणमा समस्या आएको छ। घरमा राखेको बिउले काम गर्दैन। प्रत्येक वर्ष बजारबाट धानको नयाँ बिउ किन्नु पर्छ भन्नुहुन्छ जानकी आठ भग्रैयाका तारा चौधरी।
2: धान त बजार से अन्थी त कृषि मसे बिया चालो निधरथी छैन धान त का बिरुवा दा देथी आजकल घुना जाती के निमुम दा देथी निको बजार बिरुवा दा देथी घुना जाती के घुन सको खा दे छ त कहाँ हुई मने खिना नि पाइ लगथी हाय बिरेक धान रथा आजकल त का धान लगै चालो किन्थी निधरथी
1: अन्न भण्डारण गर्ने तरिकामा परिवर्तन आएसँगै किसानले घरमा राख्ने अन्नमा विषादीको प्रयोग गर्न थालेका छन्। अहिले नयाँ नयाँ जातको बिउ बजारबाट ल्याएर खेती गर्दा अन्न भण्डारण र बिउ जोगाउन समस्या भएको छ भन्नुहुन्छ जानकी गाउँपालिका छ जगतपुरका जोग बहादुर चौधरी।
3: नहीं उम्र से आजकल घर से घर घर दिया नहीं मजा है कहाँ अब बाजार से किन कलंग बकाऊँ जब उत्तार कर दिया हो वैसे उत्पादन नहीं हुई हमरा तो सब बाजार से लंच उठा करता हूँ यहाँ घर उत्पादन वाटर कम निकल बाजार से चलन थी दिया जो कि ना समस्या तो आ यहाँ तीरा लग गई था जब मैं फुटला लग गई था घर घर पता पहले वाटर नहीं लग जाता आप तो हाइब्रिड लगे बिजली का फुटला लगे बिजली ना डांटला लग गई था
1: जानकी गाँव पालिका वड़ा नंबर तीन सुवर्णपुर का भागीराम चौधरीलाई पनि यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ।
4: पहिला गाछ उत्पादन नै है त अब बिया धारबो त बिया एउटा साल काम नै लाग्न रहेको छ एउटा बिया बिया त मात्र महँगा भए किनक पर अनुदानमा किउ नै छ आजकल अनुदान नै नै र त सजिलो पर्ने र किसान त मार प्रत्येक वर्ष चाहिँ नयाँ नयाँ बिया किनक पर्न नयाँ बिया लगाइ पर्न नयाँ बिया नै लगेला से उत्पादन नै हिँड किसान के करा विषादी प्रयोग करक पर विषादी प्रयोग नै कर से अब फेयर लाखे उत्पादनमा फेयर खरास उत्पादन मजा सुने बाना नहीं देना पैरा बंदा पहेलो हो देना बार हजार सब मार चाहिए एकदमें समस्या का कीड़ा कीटनाशक औषधि चाहिए छिटक पर्ना घास मैला औषधि से छिटक पर्ना समस्या का घर धरल से पुतली कीड़ा से लग दी था घून लग देना फिर समस्या का घर धरल से कीटनाशक औषधि अब मदारक पर्दा से नहीं तो घून लग देना पुतली कीड़ा लग देना दूसरा एक वर्ष नहीं चुगा कुछ समय दूसरी के लगे तो खाली खोखले के
1: पुरानै परिपाटीमा नरही परिवर्तन हुनु राम्रो भए पनि परिवर्तनको बहानामा पुरानोलाई माझ्दै नयाँ लगाउँदा धेरै मल तथा विषादीको प्रयोग गर्नु राम्रो होइन। यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यापारी व्यवसायीहरूको निशुल्क दुर्घटना बीमा गरेको छ। निशुल्क दुर्घटना बीमाका लागि टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघ र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स लिमिटेड बीच आज द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा संघका तर्फबाट अध्यक्ष सन्तोष खड्का र इन्सुरेन्सका तर्फबाट शाखा प्रबन्धक प्रकाश रेग्मीले हस्ताक्षर गर्नुभएको टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव प्रकाश तिमिल सेनाले जानकारी दिनुभयो।
5: टिकापुर उद्योग वाणिज्य संघले व्यवसायलाई मध्यनजर गर्दै अहिले थोरै रकम भए तापनि यो व्यवसायका हकितमा संघ चाहिँ लाग्नुपर्छ र व्यवसायीहरूको छाता संगठन भएको कारणले गर्दा पनि यो दुर्घटना बीमा भन्ने छ हाम्रो सदस्यता नवीकरण गरे बापत निशुल्क चाहिँ एक लाखसम्मको दुर्घटना बीमा हामीले प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्सुरेन्स लिमिटेडसँग सम्झौता गरेका छौँ जसले व्यवसायीहरूलाई के

0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जै बो पाछ से शुरू करल मने घर सिज्जा सेकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जनाऊ का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेल बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्र फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुढ़ो हो ना कबू कहूँ घूम जाए था पाए
2: यूपीभीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541436
3: हिन्दू महिलाहरूको महान पर्व हरितालिका तीज 2083 सालको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण ग्राहक वर्ग दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू लगायतका सम्पूर्ण नेपाली जनहरूमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै हार्दिक सुनचाली पसलमा छक्के तिलहरी माइले तिलहरी रानी हार हार मंगलसूत्र चापकी पेन्डल बाला औठी चन्द्रमा काटा नौगेडी जस्ता विभिन्न डिजाइनका गरगहना अर्डर गरे अनुसार सुपथ मूल्यमा बनाइन्छ एक पटक सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला
4: हार्दिक सुन चाँदी पसल सरकारी अस्पतालको भित्री रोड सञ्चालक शंकर साहू सम्पर्क नम्बर 9848042

महाराज परीक्षित श्री सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भंडी चारोटा कुमाराज भगवान नारायण वासुदेव प्रभु को दर्शन भेट करना का लगी बड़ो गंभीर प्रेम का साथ में जा रहे वैकुंठ धाम भन्नी समन को कथा सज्जावट जय बोलो श्री

बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।